जन्म तरहा जा गया ए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कैद सुनाए कब बात दोहरा। ठाड़ पहयो मैं जोर कार बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं जाब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत यंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। कालपुर की देह मो कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरा वसा सक्रोर दिलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चाव पई। जो यह कथा सुने अर गावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद छुवै सकै न कोई। सम्मत सत्रह है सास पचावन हाल वजी प्रथम सुख दामन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लह लेह सुधारा दोहरा। नेत्र तोंके चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रागबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

विसारणा अंगीकारो हो करे तेरा कार्य सब सवारणा सब नागल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब केश है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कार तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाईया कार सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बेटा हो जिस दी आए वडियाइया कह नानक सुनहु संत हो सब तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द चित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुहर कर्म पाया तुद जिन काउ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे अनद सुनहु वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बिसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आ पार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बेख खाई माया मोह भरम पै भूले सुत दारा सुप्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास

0: योग गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने महान कृपा कीती है सुभाग समा बख्शिया है अपनी पावन गोद अंदर सज के अपनी गुरबाणी पढ़न दा ए जो सुभाग बख्शिया है साध संगत जी आओ अपने स्वासा नूं सफलियां करिए मान चित बिरती नूं एकागर करदे होए सतगुरु जी दी पावन बाणी दे नाल जुड़ के अपना जीवन सफल करन दा जतन करिए सतगुरु जी दी कृपा रहमत दा सदका ए तरस है गरीब नवाज दियां दा साडे कलयुगी दीवां दे उपर जो सानूं एडा वडमुला ए साध संगत जी समां बख्शिया है आप संगतां ने बड़े लंबे समय तो इस तरह देवत्या वांगरा समाधियां ला के अपना समा गुरु की गुरबाणी नूं पढ़दियां लंघाया है सो साध संगत जी हुण थोड़े दिन रह गए हन जिहड़ियां संगतां लाइव दे द्वारा भी जुड़दियां इत्थों घटियां संगतां लाइव सुन लग पए ने क्योंकि उत्थों पता लग जांदा किन्ने क जाणियां दा सो बेनती है हुण गुरु दरबार च वधेरे हाजरियां भरीए गुरु के दरबार दे विच आण के अपना समा सफलियां करिए क्योंकि महंगीआं बाणियां प्रारंभ हो रही हन जदों साध संगत जी महंगी बाणी नूं गुरु की गोद दे विच बैठ के सत संगत दे विच बैठ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी प्यारी संगत च बैठ के पढ़ांगे ते मन होर भी एकाग्र होवेगा सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा कर रहे हन बसंत महला पहला मन भुलो भरमस आए जाए आत लुभद लुभानौ बिखम माए इथों सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी प्रारंभ हो रही है श्रद्धा प्रेम भावना सहित सरवण करिए जी
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी बसंत महला पहला मन भुला भरमस आए जाए आत लुभत लुभाना बेखम माए
0: लुभद पाठ साध संगत जी लुभद पोला ही करना लुभद नहीं करना बब्बे ते अदक नहीं लाउणी आत लुभद लुभाना लुभाना पाठ भी बब्बा पब्बा सांझा करके लुभानो एदा उचारण नहीं करना आत पाठ भी पोला आत लुभद लुभाना बेखम माए
1: नह अस्थर दिसै एक पाए ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भुलाओ समझ

0: एको धर्म दृढ़ सच कोई।
1: दृढ़ पाठ ते ही विश्राम रखना, धर्म ते नहीं रुकना। एको धर्म दृढ़ सच कोई।

मान अंधुला अंधुली मात लागे गौर करणी बेन भरम ना भागे रहाओ मनमुख अंधले गुरमत ना पाई पशु पहे अभिमान न जाई लख चौरासी जंत उपाए मेरे ठाकुर भाणे सिरज समाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस गुर करता।

जो कृष्ण बिदर कर आया, मिलो सुदामा भावनी धार सब किछ आगै, दालद पांज समाया, राम नाम की प्याज वडेरी, मेरे ठाकुर आप रखाई, जे सब साकत करह बखीली, एक रत्ती तेल ना कटाई, जानकी उस्तत

उपजै कह रहै कह माहे समावै जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावै कहन ध्यान सुनन सुनन नित से भगत सुहावै अगम अगोचर साहेबो दूसर लवै न लावै सच पूरै गुरु उपदेसिया नानक सुनावै बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया अनंत पा।

मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर। मैं अनाथ प्रभ कहो काहे, को न बिगुतो मैं को आहे। माधव दारुन दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहास बसाए। रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद। कवजन जोगी जटाधार, सब आपन अवसर चले सार। तू अथाह मोह थाह नाहे, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे। मोरो जन्म मरण दुख आथ धीर, सुख सागर गुण राओ कबीर। नायक एक बन जारे पाच, बर्ध पचीसक संग काच। बर्ध पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे। कसन बहत्तर लागी आ ताहे, मोहे ऐसे बनज स्यो नहीं काज। जे कटे मूल नित बड़े ब्याज। रहाओ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म भावनी संग लीन। तीन जगाती करतरार, चलो बनजारा हाथ चार। पूंजी हिरानी बनज टूट, दह दिष्टांडो गयो फूट। कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता पी जूठा, जूठे पी ही फल लागे। आवे जूठे जाहे पी जूठे, जूठे मरह अपागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ। रहाओ जेबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतरस नाही, ब्रह्म अगन के लूठे। अगन पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी कर

0: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कात जाइए रे कर लागो रंग मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाओ एक दिवस मन पई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे जहा जाइए तह जल पखान तू पूर रहयो है सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहा तो जाइए जो इहा ना होए सतगुर मैं बलिहारी तोर जिन सकल बिकल ब्रह्म काटे मोर रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद साहेब संकट वै सेवक भज्जै चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै तेरी भगत ना छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे ही अरे बसे
1: हसे लज्जे भज्जे ये सारे पाठ जिवें इस तरह कीते गए हन इसी तरह करने बसे थोड़ा जा पोला करना
0: जैसे अपने धरन प्राणी मरन मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाड़े गंगा
1: बसे ते बिंदी नहीं है पिछले जड़ी पिछली पंक्ति जे चरण कमल मेरे ही अरे बसे मेरे को बिंदी लगी सी जे किते बिंदी है पर साध संगत जी पुरातन स्वरूपां च बिंदी नहीं मिलदी अगलिया बिंदियां जिवें छाड़ें ते है हांजी
0: गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा लोभ लहर अत

ना जोन काम बसंत कबीर जियो। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल, इस घर में है सो तू ढूंढ खाए।

आओ। पूर्ण परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे, मोहन मोहे लिया मन मेरा, समझस शब्द विचारे। मनमुख हीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे, जबकि राम रंगीले राती, राम जपत मन धीरे। हम मैं छोड़ पई बैरागन, तब साची सुरत समानी, अकुल निरंजन स्यों मन मान्या, बिसरी लाज लोकानी। पूर भविख नाही तुम जैसे, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, हर कै नाम रत्ती सोहागन, नानक राम पतारा। सारग महला पहला, हार बिन क्यों रही है दुख व्यापै, जिहबा साधना फीकी रस बिन, बिन प्रभ काल संतापै रहाओ। जब लग दर्शना परसै प्रीतम, तब लग भूख प्यासी, दर्शन देखत ही मन मान्या, जल रस कमल बिगासी। ऊनव कनहर गरजै बरसै, कोकिल मोर बैरागै, तरवर बिरख बिहंगम बिहंग पुयंगम, घर पिर तन सोहागै। कुचिल कुरूप कुनार कुलखनी, पिर का सहज न जान्या, हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति, दुर्मत दुख समान्या। आए ना जावे ना दुख पावे, ना दुख दर्द शरीरे, नानक प्रभ ते सहज सुहेली।

0: अचल सतगुर पुरख अचल अचला मत जिस दृढ़
1: मत
0: सतगुर पुरख अचल अचला मत जिस दृढ़ता नाम आधारे
2: सतगुर पुरख अचल अचला मत ए चचे ते अधिकां दे सहत दोवे पाठ करने हन सतगुर पुरख अचल अचला मत जिस दृढ़ता नाम आधारे
0: तिस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारे मन मुख भ्रम दूजे पाए लागे अंतर अज्ञान गुबारे सतगुर दाता नदर न आवे ना उरवार ना पारे सर्बे घट घट रविया स्वामी

0: द्वार बिन सत संग सुख किने न पाया जाए पूछह भेद विचार राणा राव सबै को चल झूठ छोड़
1: चल

तेहत गृह वाजे पंच सबद वडभाग मथोरा तिन जन के सब पाप गए सब दोख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तिन जन के हार मार कढे पंच चोरा हर राम बोलह हर साधु हर के जन साधु जगदीश जप हो मान बचन कर्म हर हर आराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवादु नित नित जाग।

जान नानक हर स्यों मिले हर भगत तोरा सारग महला चौथा जाप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो।

तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लेवल।

संध्या काल करह सब वरता जो सफरी दम्फान प्रभु पलाए उजड़ पाए निहफल सब करमान सो ज्ञानी सो बैसनाव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान ओन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विश्वान क्या हम कथ है किछ काथ नहीं जान है प्रभ भावै तवै बोलान साध संगत की धूर एक मांगा।

सागल पराध एक गुण नाही, ठाकुर छोड़ दास भजहा, आई मस्त जड़वत की न्याय, जो तस्कर दर सन्नेहा, आन उपा न को सूझै, हर दासा सरणी पार रहा, कहो नानक तब ही मन छुट्टी है, जाओ सगले औगुण मेट धरहा, सारग महला पंजवा, माई धीर रही प्रिय बहुत बिरागेओ, अनक भांत आनूप रंग रे, तिन सुर चैन लागियो रहाओ, निसबासुर प्रिय प्रिय मुख टेराओ, नींद पलक नहीं जागियो, हार कज्जर बस्तर

देओ साध संगत अर जागेओ करहु कृपा मोहे प्रभु मिलावहु निमक दर्श पे खागेओ दृष्ट भई तब भीतर आयो मेरा मन अनदिन सीत लागेओ कहो नानक रास मंगल गाए शब्द अनाहद।

निसबासुर नखियतर बिनासी राव ससियर बेनादा गिर बसुदा जाल पवन जायेगो एक साध बचन अटलादा अंड बिनासी जेर बिनासी उत्पुज सेत बिनादा चार बिनासी कटह बिनासी एक साध बचन निह चलादा राज बिनासी ताम बिनासी सात की पी बेनादा दृष्टमान है सगल बिनासी एक साध बचन आगादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई कहीं पातरे प्रभ नानक गोर।

0: जहाँ श्रवण हर कथा न सुनिए तह महापयान उदयानद, जहाँ कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फालानंद, बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद ब्रथानंद, एक निमख गोविंद भजन कार तौ सदा सदा जीवानंद, सरन सरन सरन प्रभ पावौ दीजा साध संगत कृपानंद, नानक पूर रहयो सर्ब मै सगल गुणा बिद जानंद, सारग महला पंजवा आप
1: हाँ जी
0: नानक पूर रहयो।

जैसे पवन पवन बंद कर राख्यो बूझना आवत जावत जाको हृदय प्रगास भयो हार वाकी कही न जाए कहावत आन उपाव जेते किस कही अहे तेते सीखे पावत अचिंत लाल गृह भीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अविनाशी अतुल्लो तुल्यो न जावत कहो नानक अजर जिन

0: जा के संग पार ब्रह्म ते आईऐ उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवे हर संत सरन। आप जपै अवरह नाम जपावै वड समर्थ तारन तरन। जाको मंत्र उतारे सहसा ऊने को सुबर भरन।
1: सुबर पाठ कठ कस के करना ते सुपर नहीं करना, सुबर भरन।
0: हरदासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन। भगत जना भगत भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन। जाको भयो कृपाल बीठुला तिन हर हर अजर जरन। हर रस अगाने सहज समाने मुख ते नाही जात बरन। गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन। सारग महला पंजवा।
1: जिवें बरन उसे तरह ही उधरन। इथे उधरन नहीं, ऊड़े नू अगेतर ला के उधरन। हांजी।

0: परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने और सोग अक्सर मन दे चोंदे है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा है और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है। चाया सी कुछ हो गया कुछ सोग, मंगी सी कुछ और चीज मिल गई है कुछ और सोग, जाना सी किसे होर पासे पहुंच गए किसे होर टिकाने ते सोग, आवना सी किसे होर ने आ गया कोई होर सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हां नहीं आंदा और उस तो विपरीत हो जांदा है तो मन सोग नाल भर जांदा है। हर नवा दिन नवे सोगां नु जन्म देंदा है। क्यों कि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते होंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते होंदी है, ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जांदे ने। कबीर कहंदे ने, जो मैं चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवे हर करे जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वक्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे चे तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो, उस दे च बैठो, खेलो ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना सियाणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वधदी है सोग भी वधदा है। सोग देच होके होंदे ने, सोग देच पछतावे होंदे ने, सोग देच साड़े होंदे ने, सोग देच जलन होंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस देच मनुख दी सोचन शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जांदा है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन देच रोग होवन, मन देच सोग होवन तो ऐसे पुरुष नो किसे होर नरक देच जान दी लोड़ नहीं, नरक भोग रहे है, ये नरक देच जी रहे है। नरकी क्यों, इंज कहिए कुंभी नरक देच जी रहे है। तन देच रोग ने, मन देच सोग ने, जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे ने, इदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। आज तक मानसिक सोग नो दूर करने वास्ते जितने मनोरंजन आए ने और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नो मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने, क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जांदा है। हर तरह दा मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनो पुराना कर देंदा है। क्यों, मन चंचल है। चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदित भी महसूस करेगा मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी हुई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहुंदा है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहुंदा है, किधरे एकांत तनहाई विच बैठना चाहुंदा है। सोग इस नूं महफलां विच नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग देच ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नूं जन्म देंदा है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नूं जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है? इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने, क्यों पहुंचांदियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं ते इच्छावां चलदियां रहिंदियां उहनां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इस दी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ए इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ए इस तरह है, दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा पूरी करन देच, जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है, ते जे ना पूरी होवे तां वी इक रेखा छोड़ जांदी है, बाकी इच्छावां इन चलदियां रहंदियां ने जिवें नदी बह रही है। बावें नदी दे कोल घर है, बह रही है, पर नदी नाल उतना ही मतलब है, जो पी ले है पानी ओही हिस्सा बने है, बाकी वग रहे है। दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है, इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है, संकल्प। जिस जिस इच्छा नू पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां, ओ उस नदी दा जल बन जांदा है, उस नदी दी धारा बन जांदी है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी। इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा, क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे, ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई, उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी, लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है, ए नदी गहरी कितनी है, इदा पाठ कितना गहरा है, ए चौड़ी कितनी है, ए गहरी कितनी है। तो ए राजयोगी, ए महान संत, मन दियां गहराइयां नू समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है, बेचैनी अजे भी नापतोल विच नहीं आई, कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है। बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, इदियां जड़ां नहीं लभदियां, इदी तय नहीं लभदी, व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने, व्याकुलता ते उथे है ही। ये इसनू उल्टा के कह दो, ए बेचैन क्यों है, तृष्णालु है, ए तृष्णालु क्यों है, एदे अंदर संकल्प ने, संकल्प क्यों ने, एदे अंदर इच्छावां ने, इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी, व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहंदे ने, जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लईए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है, कितनी लंबी है, जमीन दे ते वगदियां या नदियां दे, ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने, ए किन्नी मील लंबी है, इदा पाठ किन्ना चौड़ा है, ए गहरी कितनी है। एक कोई नदी है जो मन दे च वग रही है, ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है, ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है, ना गहराई नाप दे चाहुंदी है, वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया। बकायदा फैसला भी कर देता है, बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने, जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे है। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है, जिथे इच्छावां ज्यादा ने। और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां हुईयां ने, रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं हुईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकते, या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता, और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां हुईयां, ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे, मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने, ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी। इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां होईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां होईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन दे च पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती दे च पक्की जिंदगी किसनू मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: पदी
1: संत जनामिन करो विचार
0: एक सिमर नाम आधार
1: अब रूपा स्वामीत पसारो
0: चरण कमल रिद में और तारो
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ
0: निर्कर गह नाम हर वत
1: एहो तन संचो हो भगवंत
0: संत जनाका निर्मल मंत
1: एक आसरा को मन माही
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि
1: जिस तन को चार कुंट उठता वे
0: सो तन हर से बाते पावे
1: जिस सुख को नित बांचे मीत
0: सो सुख साधु संग प्रीत
1: जिस शोभा को करे भली करनी
0: सा शोभा पर हर की सरनी
1: अन को पावी रोग न जाये
0: रोग मिटे हर अवखद लाये
1: सर्व निधान मैं हर नाम निधान
0: जप नानक दरगाह प्रवान
1: मन प्रबोधो हर कह नाई
0: वैद्य स्थापते बैठाए
1: ताको बिघन न लागे कोई
0: जाके हृदय बसे हर सोए
1: ताती ठंडा हर नाओ
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: हो बिन सह पूर्ण होए आस
0: भगत पाए आत्म प्रकाश
1: हित कर जाए बसे अविनाशी
0: तो नानक काटी जम फासी
1: सत विचार कह जन साचा
0: जन्म मर सो काचो काचा
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव
0: आप त्याग शरण गुरुदेव
1: क्यों रत्न जन्म का होए उधार
0: हर सिमर पुराने आधार
1: अनको पाप न छूटन हारे
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे
1: हर की भगत करो मन लाए
0: मन वंशत नानक फल पाए
1: संग न चार स्थे रह तना
0: गल बटावे मूर्ख मना
1: सुत मीत कुटुंब हर बनेता
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छुटकार
1: आस हस्ती रथ सवारी
0: झूठा डंप झूठ पसारी
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना
0: नाम पसार नानक पछताना
1: गुरकी मातू ले आने
0: भक्त बिना बहु डूबे सियाने
1: हर की भगत करो मन मीत
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल रखो मन माही
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे
1: आप जपो अवर नाम जपाव हो
0: संत कहत रहत गत पाव हो
1: सार पूर सत हर को नाओ
0: सहस भाई नानक गुण गाओ
1: गुण गाव तेरी उतर समैल
0: मिनस जाय हो मैं बिख फैल
1: होए अचिंत बसे सुख नाल
0: सास ग्रासर नाम समाल
1: छाड़ सियान सगली मना
0: सात संग पावे सच तना
1: हर पूंजी संच कर हो व्यवहार
0: हम सब दर गय जयकार
1: सर्व निरंतर एको देख
0: तो नानक जाके मस्तक लेख
1: एको जाप एको सलाह है
0: एक समय एको मन आहे
1: एक स्के गुण गाओ अनंत
0: मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आप
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप
1: अंत विस्तार एक ते भये
0: एक आराध प्रास्त गए
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाई
0: नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान
0: कृपा देव हर नाम
1: साधना की मांगो धूर
0: पार ब्रह्म शब्दा पूर
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो
0: सास सास प्रभ तुम्हें त्यागो
1: जन कमल से लागे प्रीत
0: करो प्रभु की नित नीत
1: एक ओट एको आधार
0: नानक मांगे नाम प्रभु सार
1: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए
0: रस पावे बिरला कोए
1: इन चाख्या से जान तृप्ताने
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने
1: सुपार परे प्रेम रस रंग
0: उपजे चाओ साधक संग
1: परे शरण आन सत्याग
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग
1: बड़ भागी जपया प्रभु सोए
0: नानक नावर ते सोए
1: सेवक की मनसा पूरी भई
0: सतगुरु ते निर्मल मत लई
1: जान को प्रभु होए दयाल
0: सेवक की नो सदा निहाल
1: बंधन काट मुक्त जन भया
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया
1: पुन्नी सरदा सा पूरी
0: रब रहे सत्संग हजूरी
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए
0: नानक भक्ति नाम समाये
1: सोक्यों बिसरे जे काल न पाने
0: सोको बिसरे जे किया जाने
1: सोक्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न में रख है
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काट है
0: जनम जनम का टूटा गंढ है
1: गुर पूरा तत् एह बुझाया
0: रब अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो एह काम
0: मान त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
0: आप जपो अबरे नाम जपावो
1: भाई तरिया संसार
0: भक्ति तन होशी सार
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम
0: मूर्त जात पाए विश्राम
1: सगल दुख का होत नास
0: नानक नाम के को गुण पास
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ
0: मंत्र अंतर ही स्वाव
1: नेत्रों देख दर्श सुख होए
0: मन बिक सह साध चरण धोए
1: भक्त जना कै मन तन रंग
0: अल्लाह को पावे संग
1: एक बस दी जय करमया
0: प्रसाद नाम जप लिया
1: ताकि उपमा कही न जाए
0: नानक रहया सर्व समाये
1: रब बख्शांत दीन दयाल
0: भक्त बशल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल
1: हाथ पुरख कारण करतार
0: जना के प्राण आधार
1: जो जो जपे सो हो पुनीत
0: भक्त पाए लावे मन हीत
1: हम निर्गुण यार नीच अजान
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए
0: एक निमक हर के गुण गाए
1: अनक राज भोग बड़े आई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: वो भोजन का प्रसन्न गीत
0: रसना जपती हर हर नीत
1: भली सो करनी सोभा धनवंत
0: हृदय वसे पूर्ण गुरु मंत
1: साध संग प्रभ देहो निवास
0: सर्व

0: कह किस कहो गनी।
1: जब एक ही हर अगम अपार,
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार,
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाई,
0: जब शिव शक्त कहो हित ठाए,
1: जब आप ही आप अपनी जोत धरै,
0: जब कवन निडर कवन कत डरे,
1: अपन चलित आप करना हार,
0: नानक ठाकुर अगमय पार,
1: अवनासी सुख आपन आसन,
0: जब जन्म मरण कहो कहा विनाशन,
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए,
0: तब जमकी त्रास कहो किस होए,
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चित्र गुप्त किस पुष्ट लेखा,
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे,
1: अपन आप ही अचरजा,
0: नानक अपन रूप आप ही उपरजा,
1: जय निर्मल पुरख पत होता,
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन कमान कौन अपमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय शल छिद्र लगत कौ कीस,
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
0: जय किस भूख कवन तृप्तावे,
1: करन करावन करने हार,
0: नानक करते का नहि सुमार,
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई,
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण,
0: जय वेदक देव कहा को चीन,
1: जब अपन आप पुरता है,
0: शगन अपशगन कहा विचार,
1: जय आपन ऊंच आपन आप नेरा,
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा,
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद,
0: नानक अपनी गत जन हो,
1: जय छल अशेद अभेद समाया,
0: वहाँ किसे व्याप्त माया,
1: आप उसको आप ही आदेश,
0: देवन का ना ही प्रवेश,
1: जय एक ही एक एक भगवंता,
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता,
1: जय आपन आप पतियारा,
0: जय कौन कथा कौन सुनने हारा,
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा,
0: नानक आप उसको आपे पहुँचा,
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार,
0: त्रिगुण मैं की नो विस्तार,
1: पाप पुण तह भई कहावत,
0: ओ नरक को स्वर्ग विशावत,
1: काल जाल माया जंजाल,
0: मैं मोह परम पै भार,
1: दुख सुख मान अपमान,
0: अनक प्रकार की ओ बख्यान,
1: अपन खेल आप कर देखे,
0: खेल संकोचे तो नानक एक,
1: जय अवगत भगत है आप,
0: जय पसरे पसार संत प्रताप,
1: तुम पाप का आप ही धनी,
0: उनकी शोभा उन्हों बनी,
1: आपे कौतुक करे अनंत जोज,
0: आपे रस भोगन निर्जोज,
1: जिस भावे तिस आपन नाई लावे,
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे,
1: बेशुमार अथाह अगंत अतुल,
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक
1: जी जंत्र के ठाकुरा आपे वर्तन हार,
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार, अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार,
0: आपे एक आप विस्तार,
1: जांतस पावे तां श्रेष्ठ उपाय,
0: अपने भाने लय समाये,
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए,
0: अपन सूत सब जगत परोए,
1: जाको प्राप्ति आप बुझाए,
0: सच नाम सोई जन पाए,
1: सो समदर्शी तत् का बेता,
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता,
1: जी जंत्र सब तां कै हाथ,
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ,
1: जिस राख तिस को नमर,
0: सो मुआज मनो बिसार,
1: इस तक अवर कहा को जाए,
0: सब सिर एक निरंजन राय,
1: की जुक्त जा कै सब हाथ,
0: अंतर बाहर जान साथ,
1: गुण निधान बेअंत अपार,
0: नानक दास सदा बलहार,
1: पूर्ण पूर रहे दयाल,
0: सब पर हो वित कृपा,
1: अपने कर्तव्य जाने आप,
0: अंतर जामी रहो व्याप,
1: प्रत पाले जी अनुभव भांत,
0: जो जो रचियो सो तिस एहतियात,
1: जिस भावे तिस लय मिलाए,
0: भगत करे हर के गुण गाए,
1: मन अंतर विश्वास कर मान्या,
0: करन हार नानक एक जाने,
1: जन लागा हर एक कै नाई,
0: जिसकी आस न वृद्धि जाए,
1: सेवक को सेवा बन आई,
0: हुकम बूझ परम पद पाई,
1: इसके ऊपर नहीं भी चार,
0: जाके मन बसया निरंकार,
1: बंधन तोर भय निर्वैर,
0: हर दिन पूजा गुर के पैर,
1: ए लोक सुखी ए परलोक सुहेले,
0: नानक हर प्रभ आपे मेले,
1: साथ संग मिल करो आनंद,
0: गावो प्रभ परमानंद,
1: राम नाम तस करो विचार,
0: दुर्लभ देखा करो उदार,
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ,
0: प्राण तरन का एह स्वाव,
1: आठ पैर प्रभ देखो नेरा,
0: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
1: सुन उपदेश हृदय बसावो,
0: मन इच्छे नानक फल पावो,
1: हलत पलत तो लेहो सवार,
0: राम नाम अंतर उरतार,
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
0: मन बसै ते साच परीखिया,
1: मंत्र नाम जपो लिबलाए,
0: दुख दर्द मन ते पाओ जाए,
1: सच व्यापार करो व्यापारी,
0: दरगह निधह खेप तुम्हारी,
1: एक टेक रखो मन माहे,
0: नानक बहुर न आवे जाहे,
1: इससे दूर कहाँ को जाए,
0: तुबरे राखन हार ते आए,
1: मेर भव जपै सकल भव मिटै,
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै,
1: जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख,
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटै हंकार,
0: तिस जन को कोई न पहुँचन हार,
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा,
0: नानक ताके कार्ज पूरा,
1: मत पूरी अमृत जानकी दृष्ट,
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: भान सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरख प्रधान,
1: जिस मन बसै सोहत निहाल,
0: राका निकट न आवत काल,
1: अमर भये अमरा पद पाया,
0: साध संग नानक हर त्याया। श्लोक
1: ज्ञान निरंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश,
0: हर कृपा ते संत पेटिया, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਬੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੇ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚਰਤ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਤਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਮ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਅੰਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਾਰ ਖੇਲੇ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਂਕੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਪਣ ਜਾਨਿ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤ ਹੋ ਰਹਿ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪਾ ਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
1: ਇਸੇ ਹੋਈ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤਮੀ ਕੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਪੋਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਜ
1: ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਰਿਦਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
1: ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
0: ਜਨ ਕੇ ਸਮਝ ਤੇ ਆਵੈ ਨਾਮ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ
0: ਨਾ

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: वाह ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: सुनत कमाप्त होत उदार
0: आप त्रैलोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजे
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजे
1: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रेन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आप जंजाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्रभ की उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सुहोत निधान
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए पल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समृत शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जाके मस्तक कर्म प्रपाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से पै भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुख मनी।

अगाध अबाध आनंदी स्वरूप नमो सरमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे

चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दान चत्र चक्र जान चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र परथी से आदि से अदर से अकर से भगवती छंत वै प्रसाद कथते के आ छे ज दे स के आ भिज पे स के आ गंज कर मैं के आ भंज भर मैं के आ भिज लो कह के आ दे तो कह के आ बधूत बरने के बेभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तो जा है के शोक बरने के सर्वा भरने के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है।

त्रिमुक्त विभूत भरभूत प्रभ सुजूत सुदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है दरबाद स्वरूप है गाद है अनूप है ओंगाद रूप अनाद स्वरूप नंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभाग्य सर्वानुराग है।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणाशे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशी स्वतर्मंग बेपूते सदा सचदा नाद सतरंग प्रणाशी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजाय बेपूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करिमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र

सवार कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौर के गौर को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दसान को बाजत टोहल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गण नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत।

पौड़ी सेव की दी संतोखी जिन सच्चो सत्य आया ओनी मंदे पैर न रखियो कर सोकरी तनम कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नि देवे।

दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवन दिन नीत खोल कपट गौर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा जब लो नहीं भाग लिलारे उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल

0: की फतेह।
1: सतगुरु साहब जी ने बेअंत कृपा की है, अमृत गुरबाणी दे कीर्तन दे दात आसीस रूप च हुक्मनामा साहब जी की बख्शिश सतगुरु साहब जी ने की है, सेवा निभाई है बहुत सत्कार योग सिंह साहब ज्ञानी गुरचरण सिंह जी मुख अरदासी है सचखंड श्री हरिमंदर साहिब, बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जी कल नूं 15 अगस्त काले दिन वजों हर साल मनाया जाता है, क्योंकि बहुत वड्डा नुकसान होया सी 1947 विच राजनेतियां दी कुटल नीति दे तहत 10 लाख कतल हो गया सी जी। कल ज्ञानी जी दस रहे सन उस्ताद जी ज्ञानी कुलदीप सिंह जी कि एक परिवार ने 26 अपनियां बेटियां दियां गर्दनां वड्डियां, 26 जां बेटियां दियां करदे की मुसलमान वाड़ां दियां वाड़ां चाड़ आईयां, ते उन्होंने कहा भी कि भी सानू अपनी आ फलानी बेटी दे दिओ, ते हुण गुरु के सिंह इह तां नहीं ना कोई कर सकदे। फिर धियां फिर आप अगे होईयां और खालसा जी एक जने पिता का हौसला ना, फिर चाचे ने कृपान फड़ के ते ओ सारियां दी आवार उवार धौणा वड्डियां, ओ धियां अगे करी जांदियां इस तरह करके धौण ते ओ फिर चलाई जांदे नाले रोन रोई जांदे। करदे की जे ना करदे तो उन्हें इज्जत लुट लैणी है, मुसलमाननियां बना लेना है। तो संगत जी बहुत वड्डा नुकसान होया साडा और काले दिन वजों मनाया जांदा है, इस करके कल नूं 12 to 2 दुपहरे भारतीय कौंसलेट दे सामने हाउस स्ट्रीट वैनकूवर उत्थे शांतमय रोस प्रदर्शन किया जाना है। 10 बजे अपनी इतो बस चलनी गुरद्वारा साहब तो वध हाजरियां भरन की कृपालता करो। 17 तरीक नूं संगरांद दा भादरो महीने की संगरांद आ रही है, 25 to 30 अगस्त तक रागी भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी कीर्तन की हाजरी भरनगे। गुरबाणी पाठ बोध 30 अगस्त नूं संपूर्णता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा संपूर्णता दिवस भी आ रहा है 30 तरीक नूं ही। तो साध संगत जीओ हुण बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी खालसा उस्ताद जी उन्हां तों पवित्र हुक्मनामा साहिब जी दी कथा विचार सरवण करदे हां और संगत नूं बेनती है कि जिन्हां संगतां ने काम ते ना जाना होवे जो हुक्मनामा साहिब जी महाराज बख्शिश कर दे उदों जरूर बैठ जाया करो जिथे भी हुंने आपां, जे तो काम ते जाना चलो मजबूरी है कह नहीं सकदे, ते जे आपां नूं कोई काम नहीं है फिर आपां 2-4 मिनट बाद हुक्मनामा साहिब तो बाद नमस्कार कर लिया करिए, ये बेनती प्रवान होवे जी। हुण पवित्र हुक्मनामा साहिब जी दी कथा विचार नाल जोड़दे हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु साहिब जी।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਹੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੰਬਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਫੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਕ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ। ਸਮਝੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਸਿੰਗ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀ ਵੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਬੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਬੋਲ ਪਿਆ? ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ। ਵਾਪਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੋਗ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਮਾਰੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਤਸੰਗੀਓ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਿਛੁਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1: ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ,
0: ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਾਰੇ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਧਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਚ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਜੀ, ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਨਹੀਂ ਵਹਿਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਹਿਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ,
1: ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ,
0: ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਐਸਾ ਫਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਸਤਸੰਗੀਓ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਹੀ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਜੰਮਿਆ ਕਦੀ ਮਰਿਆ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗ 'ਚ। ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਸਿਮਰਨ ਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ।
0: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਮੰਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
1: ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ।
0: ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ ਜਰੂਰ, ਪਰ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ।
2: 1550 KRPI ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਰੀ।
3: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
4: ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ। ਆਪਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਤਨ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੇਤਨਾ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾ। ਜੈਸੇ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਮੰਨੇਗਾ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਇਸੇ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 90 फीसदी काम ते मैं लोकां दी अखां वास्ते करदा, अपनी अखां वास्ते ना। किवें मैं लोकां दी नजरां तो उच्चा उठ जावां ते लोकी सिर उच्चा करके मैनूं वेखण। हंकार ए चाहुंदा है नौ खंड पृथ्वी विच मैं जाणिया जावां। महाराज कहिंदे नवां खंडां विच जाणिए नाल चले सब कोर। सिर्फ एक शहर दे लोकी ही मैनू ना मनन, सिर्फ एक मुल्क दे लोकी ही मैनू ना जान दे वन। सारा संसार जानदा होवे ते सारा संसार झुके भी। हंकार दी ये मंग है। ये गल वखरी है, हंकार कदी त्रिपत नहीं हो सकता। सदा हमेशा कोई ना कोई उस तो अगे होवेगा। जे ए धन देच अगे होवेगा ते कोई सेहत देच तंदुरुस्ती च अगे होवेगा, ते जे तंदुरुस्ती देच अगे है ए कला देच ज्ञान देच पिछे पिछे होवेगा, कोई इस तो अगे होवेगा। ते जे ए कला ते ज्ञान देच अगे ते कोई स्वप्न देच इस तो अगे होवेगा, सुंदरता देच इस तो अगे होवेगा। किसी ना किसी पक्ष विच हर मनुख दे कोलों कोई ना कोई अगे होवेगा। मनुख हर पहलू विच अगे नहीं हो सकता। अज तक कोई इस तरह का मनुख होया ही नहीं जो हर पहलू विच अगे होवे। ये भी मैं अर्ज कर दें, किसी ना किसी च पछड़े होया होवेगा। कला विच अगे होवेगा, शरीरक बल दे च पछड़िया होया होगा, तंदुरुस्ती दे च पछड़िया होगा, स्वप्न दे च पछड़िया होगा, ताकत बाहु बल राजनीति दे च या धन संपदा दे च पछड़िया होया होगा। हर पक्ष दे च मनुख अगे नहीं होंदा। हंकार हर पक्ष दे च अगे होना चाहता है। बड़ी चोट लगती है उसनों जद किसी पहलू च उस नालों कोई अगे होवे। हंकारी दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, छोटे मासूम बच्चे दे सामने मनुख दा हंकार नहीं चलता, क्योंकि समझदा ही नहीं हंकार की होंदा। समर्थ शक्तिशाली दे सामने भी हंकार नहीं चलता, क्योंकि मनदा नहीं। उत्थे हंकार चलदा ने। इस वास्ते हंकारी अक्सर अपने ते छोटियां नू लबेगा या दूसरियां नू छोटा समझेगा। हंकार दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा विनम्रता दी यात्रा है, निर्माणता दी यात्रा है। मिठत नेमी नानका गुण चंगे आईया तत्। विनम्रता सारे गुणा दा निचोड़ है, गुरु नानक इंज कहंदे। जिवें तिल ने ते फिर तिलां दा तेल है, बदाम ने ते फिर बदामां दा रोगन है, सारे गुण ने ते फिर गुणा दा तत् है कि विनम्रता निर्माणता। मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत्। एक आलम इंज कहिंदा है, जुबान खोलेंगे मुझ पर बद जुबान क्या बदशुवारी से, कि मैंने खाक भर दी है उनके मुंह में खाक सारी से। मैं ते सारियां दी खाक सार हो गया, पैरां दी खाक हो गया, हुण होर मैनू की पछाड़ोगे। मैं ते खुद ही पछड़िया, मैं ते सब दे पैरां दी खाक। दी सावत है बहुत बेहाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज, सगल चरण की एहो मन राला। हे प्रभु मैं ते सारियां दे चरणा दी खाक, सारियां दे चरणा दी थोर। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा एक वाक शब्द है, ते लंगर आग दा पर है परशियन दे सारा। अखीरलियां पंक्तियां सतगुरु उथे कहंदे ने, बदबख्त हमचू बखील गाफल, बेनजर बेबाक, हे प्रभु, मैं कोई चंगी किस्मत लेके नहीं आया, मेरी प्रलोभ चंगी नहीं है। क्यों तू नहीं मिलेगा? किया होया जो बहुत कुछ मिले है, तू नहीं मिलेगा। बद वक्त हम चो बखील चुगल खोर भी हैं, निंदा भी कर दा, हंकारी मनुख नो निंदा दे रस मिलता है। जिनू उंज छोटा नहीं कर सकता, निंदा नाल छोटा करन दी कोशिश करता है। निंदा की आउंदी है? गल नू घटा के बयान करना, खुशामद की ये गल नू वधा के बयान करना, दोवें झूठ ने। दोहां नाल मन मैला आउंदा है, दोहां नाल मनुख परमात्मा तो दूर आउंदा है। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज रोकदे ने, उस्तत निंदा दो ते आगे, खोजे पद निर्वाणा, पर जन नानक एव खेल कठन है, कि नहु गुरुमुख जाना। औखी खेड है कि मनुख निंदा भी ना करे ते उपमा भी ना करे। या मनुख घटा के गल करदा है, या वधा के करदा है। अक्सर वैरी दी गल मनुख घटा के करदा है, अंदर ईरखा है, जलन है, ते मनुख घटा के गल करदा है, निंदा करदा है। अंदर कोई लालसा ते लोभ है, तो मनुख खुशामद करदा है, वधा के गल करदा है। फुल नू कंडा कह देना ये निंदा है, गल घटा के बयान कीती गई है। पर कंडे नू फुल कह देना ये खुशामद है, गल वधा के बयान कीती गई है। इन्हां दोहां नाल मन मैला हुंदा है। फुल नू भावें कंडा कहिए, भावें कंडे नू फुल कह दईए। मैं कई दफा हैरान होना, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष निरपक्ष आते ने, पक्षपाती नहीं आते। भाई गुरुदास जी ने एक लंबी चौड़ी पौड़ी विच एक वार्ता लिखी, उसका भी सूक्ष्म जिहा रूप में थोड़े सामने रखते हैं। दुर्योधन श्री कृष्ण जी दे पास गए, कहने लगे भगवान जितने तुसी सखा अर्जन दे हो मेरे भी हो, जितना संबंध थोड़ा उन्हां नाल है मेरे नाल भी है, साड़ी मदद करो तुसी, मैं थोड़े कोल आया फरियाद लेके। इस कथा नू भाई गुरदास जी ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। श्री कृष्ण ने कहा, एक मैं आ एक मेरी फौज है, तू दोहां दे च एक नू चुन सकदा है, या मेरी फौज ले ले तेरे पक्ष दे च लड़ेगी, या तू मैनू ले ले मैं तेरे पक्ष च खड़ा हो जावांगा। राजनैतिक बंदा सी दुर्योधन, धार्मिक तो है नहीं सी, संसारी बार मुखी मनुख सी, बार मनुख जिसका सब कुछ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदरों सोचता है मौका मिल गया, कल्ले कृष्ण नू मैं की करना, महाराज फिर फौज ही दे दो। कृष्ण ने कहा, ठीक, मेरी फौज तेरे पक्ष दे च खड़ी होगी। अर्जुन आया चरना ते मथा टेके, श्री कृष्ण कहने ने तू देरी नाल आया, दुर्योधन ने मंग की थी सी, ते मैं कह दिता सी या मेरी फौज ले ले या मैनू, फौज ते उसने मंग ली है, सिपाही ते उसने मन, सेना ते उसने मंग ली है, हुण ते मैं ही हां कल्ला। अर्जुन हाथ जोड़ के कहिंदा है, भगवान जे ए अवसर मैनू पहले मिलदा मंगण दा, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਂਡੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਗ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੁਛ ਗੁਣ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜਪਾਠ ਦੇ ਚ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਫਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੜਪਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਅਲਲ ਸੁਭਾਅ ਉੱਠਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧਨਾ ਨਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਸੁਭਾ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਓ, ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਮੁਖ ਦੇ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੂੰ ਅਲਲ ਸੁਭਾ ਉੱਠਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਭਾ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਅਲਲ ਸੁਭਾਅ ਉੱਠਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੂੰ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੂੰ ਪੰਜੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। औरंगजेब तेरी एक होर भी खूबी है, तू हाथ दे तस्बीह रख दे माला और मणका फेरदा ही रहना है अल्लाह अल्लाह जब वेला बैठा हो करी जाना है, ये भी तेरी खूबी है। जुम्मा रात नो भाव वीरवार दी रात नो जुम्मा रात कहंदे ने तो जकात भी देना है, ये भी एक तेरी बहुत वड्डी खूबी है। ते रमजान दे महीने च तू पूरे 30 रोजे भी रखदा है, कुछ नहीं खांदा तू रोजे भी रखदा है। ये खूबियां बयान करके फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने इतने गुणा दे होंदे होया इतनिया खूबियां दे होंदे होया औरंगजेब फिर भी तू शैतान है फरिश्ता नहीं है। फुल नो फुल कह देता है कंडे नो कंडा, हुण कंडे नो कंडा कहना फुल नो फुल कहना है सच्चाई है। कंडे नो फुल कह देना खुशामद है, फुल नो कंडा कह देना निंदा है। गल घटा के बयान करनी निंदा है, गल वधा के बयान करनी खुशामद है। कंडे नो कंडा कह देना फुल नो फुल कह देना ये सच है। अक्सर मनुख अधूरा सच बोलता है जो झूठ नालों भी पैड़ा होता है। अधूरा ज्ञान नियम हकीम ये जान नो खतरा होता है। अधूरा सच की फुल नो ते फुल आख देता है, उन कंडे नो कंडा कहना औखा है। जे कंडे नो कंडा आखे ते चुभेगा, साडे ही कपड़े फाड़ेगा, साडा ही दामन चीरेगा, चलो की लेना सी। ये कदे कदाई कोई अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते प्रगट आउंदे ने जो ऐलानिया फुल नो फुल कह देंदे ने कंडे नो कंडा कह देंदे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे दी बाणी दे राही कहंदे ने इतनी खूबियां दे होंदे होया इतने गुणा दे होंदे होया औरंगजेब तू शैतान है फरिश्ता नहीं है। तो रामन नदानम के यजदा शनास बरामद जतो का रहा दिल खराश। मैं तेन खुदा शनास नहीं मनदा, तेन खुदा दी कक समझ नहीं है। तू ओ कम कीते ने जेदे नाल लोगां दे दिलां नूं चोट पहुंची है। रब नाल जुड़िया होया मनुख कदम कदम ते लोगां दे दिलां नूं जोड़दा है, जोड़दा है। जफरनामे दी इक प्राचीन कहानी नूं भी सतगुरु ने अगे कीता है। उहदा एक छोटा जिहा भाग मैं थोड़े सामने रख ही दिया। मिडल ईस्ट दे जिहड़े चार धर्म पैदा होए ना, पुराना सब तो यहूदी है, फिर ईसाई होए, फिर जरदरस्ती ते फिर इस्लाम। जिस तरह भारत दे सनातन मत सब तो पुराना है, फिर जैन मत, बौद्ध मत, फिर नवा धर्म सिख मत। चार ही धर्म भारत दे पैदा होए, चार ही धर्म मध्य पूर्व जो है मिडल ईस्ट दे पैदा होए, बाकियां सारियां इन्हां अठां दियां शाखां ही ने दुनिया दे च। मूल रूप दे च ये अठ ही ने। यहूदियां दा रैबरी पुरुष जो 3,500 साल पहले अंदाजन होया है, कोह तूर कोह कहंदे ने पहाड़ नूं, ते पहाड़ दा नां सी तूर। उस ते चढ़ के रोज इबादत करदा सी, बंदगी करदा सी। मुहम्मद साहब भी एक पहाड़ ते जांदे सन, गार अजे भी बनी हुई है। हुण उत्थे तक सऊदी अरब दी गवर्नमेंट ने बकायदा सड़क बना दिती है, टनल बना दिती है, सुरंग बना दिती है। 8-10 मील दी वाट करके यात्रियां नूं जाना पैंदा सी, हाजियां नूं हुण सिर्फ 3 मील दा रस्ता रह गया। जिथे बैठ के मुहम्मद साहब बंदगी करदे सन, अल्लाह दा जप करदे सन, पहाड़ है। मैं हैरान हाँ पछोकड़ जीवन दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी हेमकुंड नूं चुनिया, पहाड़। भारत दे चोटी दे ऋषि मुनि 90 फीसदी पहाड़ां ते जप तप करदे रहे, जमीन तो थोड़ा जिहा बुलंद उठ के कुछ न कुछ मदद मिलती होवेगी। खैर इस दी लमकाई ते मैं ना जावां, कोतूर ते जांदा सी। एक दिन एक अयाली जिदे कुल 100-150 भेड़ां सन, जंगल चरंदा सी, जंगल च रहिंदा सी, भेड़ां दा दुध वेच के उन वेच के अपना गुजारा करदा सी। रात नूं वी जंगल च ही रह जाना है, बस कंडियां दी कवाड़ जिहा बनाई हुई सी चारों पासे जिहदे च भेड़ां नूं वाल लैंदा सी और उत्थे ही बार सौ जांदा सी। एक दिन ख्याल आया शहर ते देखा, कदी गया नहीं, शहर देख लवा, बहुत वध गया, वड्डा हो गया, पर भेड़ां नूं कल्ला छड्डण नूं वी जी ना करे तो भेड़ां नूं वी नाल लै गया। शहर दे अंदर जैसे दाखल होया तो पहले एक इबादत गाह पैंदी सी, उत्थे एक वाइज भाव कथा करन वाला, रब दी गल करन वाला लोकां नूं सुना रहा सी, खुदा जेड़ा है ला मकान है, ला शरीक है, ला मैदूद है। एक खड़ा होके सुन लग पिया ला मकान, उदा कोई निश्चित थां टिकाणा नहीं, जैसे कलगीधर पातशाह कहिंदे ने अनाम है अठाम है, तू सर्वदेशी है, व्यापक है, तेरा निश्चित एक टिकाणा नहीं है। एक टिकाणा उसका हो सकता है जो एक जगह है ते दूजी जगह नहीं है। अनाम है अठाम है, तेरा कोई निश्चित नाम नहीं है, तू अनाम है। हर चीज अनाम पैदा होती है, असि भी अनाम पैदा होया, बाद सानू नाम दिता जाता है। फिर मनुख ने सारी चीजा नू नाम दिते ने, उन कोई चीज नाम लेके जमदी नहीं, नाम कोई परमात्मा का भी नहीं है। कलगीधर पातशाह कहते हैं अनाम है अठाम है। जाप साहब एक ऐसी अगम्मी बाणी है, और मेरे ख्याल सिर्फ जाप साहब का बोध हो जाए तो मनुख नू पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाए, पूरी समझ पै जाए। ऐसी अगम्मी रचना है धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थी। अनाम है अठाम है, हे प्रभु तेरा निश्चित कोई ठिथा टिकाणा नहीं, तेरा कोई नाम नहीं। मनुख ने तेरे तेरे जे तेरे जेड़े गुण देखे ते जिना जिना गुणा तो प्रभावित होए, नाम देंदे गए नाम देंदे गए। कोई किसी गुण तो प्रभावित होया, किसी ने कोई पहलू देखिया, किसी ने कोई पहलू देखिया, फिर भाषा लोगों की अलग अलग, तो भाषा नु आधार बना के, पहलुआ नु आधार बना के हजारा नाम परमात्मा दे हो गए। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, सदके जाने जितने भी तेरे नाम है। गुरु नानक बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। मैं हैरान हा सूरज दे कई नाम ने, सूरज नु सूरज कहंदे ने, रवि कहंदे ने, भान कहंदे ने, फिर परशियन विच खुर्शीद कहंदे ने, आफताब कहंदे ने, सन कहंदे ने, इसे एक सूरज नु कोई झगड़ा नहीं करदा। आफताब आखो खुर्शीद क्यों कहंदे हो, खुर्शीद आखो आफताब क्यों कहंदे हो, सूरज आखो रवि क्यों कहंदे हो, या रवि आखो भान क्यों कहंदे हो। पर जिहड़ा महासूरज है ना, वो परमात्मा, इस ते बड़े झगड़े ने। राम क्यों कहंदे हो, अल्लाह आखो, अल्लाह क्यों कहंदे हो, राम आखो। परमात्मा दे नाम ते अज तक पता नहीं कितने झगड़े हो चुके ने और हो रहे ने, और पता नहीं कितना खून खराब है। राजनीति करके भी इतना खून खराबा नहीं होया जितना धर्म दे नाते होया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, कलगीधर पातशाह कहने हे प्रभु तेरा कोई नाम नहीं, अकाल उस्तत देते थे तक कहने ने कहा नाम ताको कहा कह कहावे कहा मैं बखानो कहे मो नावे। हे प्रभु मैनु कुछ नहीं पता तेरा की नाम है, मैनु कुछ नहीं पता। गुरु गोविंद सिंह दसवें गुरु नाम, कहा नाम ताको कहा कह कहावे कहा मैं बखानो कहे मो नावे, क्योंकि हर नाम तेरे ते पूरा उतर जाता है। मैं किस तरह कह दे ये नाम है ते नहीं, ये है ते वो नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज इसनु ही स्पष्ट कर देन, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, सदके जाने जितने भी तेरे नाम ने, जिस जिस नाम नाल तेनु याद कर देन। कुछ इस अयाली ने सुनिया परमात्मा दा कोई घर थां ठिकाना नहीं है, सीमित ज्यों दी सोचनी सी विचारे दी, ला मकान ला शरीक उदा कोई शरीक नहीं है। हस पिया ए अयाली पेड़ा नू वापस ले आ उत्थे, कहिंदा ले खुदा गल ते तेरी बड़ी सुनदे हुंदे सी, पर अज पहली दफा पता चले तू मेरे वर्गा ही है। साडा भी कोई घर गाट कोई नहीं, तेरा भी कोई नहीं, साडा भी कोई शरीफ कोई नहीं, ना मां है ना प्यो है ना भरा है ना भैन कोई भी नहीं है, तेरा भी कोई नहीं। चलो हुण होर ते किसे नाल मेरी सांझ नहीं बनदी, क्यों किसे दा कोई है किसे दा कोई है किसे दा कोई अपना ते कोई नहीं। गुरु अंगद देव जी का एक बड़ा कीमती श्लोक है, किस ही कोई कोई मंज निमाणी एक तो। इत्थों इसने फरियाद कीती हे प्रभु हे खुदा किसे दा कोई है किसे दा कोई है किसे दा कोई अपना ते कोई नहीं, ना कोई भैन है ना कोई भरा है ना माता ना पिता, कोई संतान नहीं कोई पत्नी नहीं कोई मां बाप नहीं कुछ भी नहीं, कल्ले। अज पता चले है तू भी कल्ला है, तू भी कल्ला है, ला शरीक है। एक कहिंदा मेरा मन बहुत खुश होया ए खुदा बहुत खुश होया अज पहली दफा पता चले तो मेरी दफा मेरी तरह। पता है वापस आके इसने की कीता, संध्या हो चुकी सी, पेड़ां दा दुध चोया गर्म कीता, बाजरे दे दो प्रशादे बनाए ते लेके बैठा। कहिंदा खुदा साढ़े कोल ते 150 दे करीब पेड़ां भी हैं, पता नहीं तेरे कोल हैं के नहीं। ते ऐ हुण तू मेरे नाल आ बैठ के रोटी खा, दुध मैं गर्म कीता तू पी, तू रज जाएगा फिर मैं बाद च पीवांगा। खुदा मैनू ए ते नहीं पता तेरे विच की गुण ने, पर तू मेरे गुण सुन ले। अज तक दुनिया परमात्मा दी सिफत सलाह कर दी रही है, उदे गुणा नू सामने रख के। रूहे जमीन दी चिकित्सा दा पहला भगत होया जो अपने गुण रखदा पे, कहिंदा खुदा मैनू ए ते नहीं पता तेरिया की खूबियां ने पर मेरिया खूबियां सुन ले। तेनू कदी ताप चढ़े ना ते मैनू जड़ी बूटियां दा भी थोड़ा जिहा ज्ञान है, मैनू अपने प्यो तो मिलिया सी जो गुजर गया। ओ जड़ी बूटियां तोड़ के घोट के मैं तेनू पिला देंगा तेरा ताप ले जाएगा। हे खुदा एक होर भी खूबी है मैनू मेरे को, तेरे कपड़े पाट जानना मेरे को सुई धागा भी है, मैं रखे होया तेरे कपड़े सी देंगा। फिर होर भी सुन ले खुदा, किधरे तेरी जुत्ती पाट जाए ना मैनू वह भी गंढण की जात आउंदी है। तू आ ते सही मैं तेरिया जुतियां गंढांगा, मैं तेरे पाटे हुए कपड़े सियांगा। ए खुदा तू आ ते सही जे किधरे तेनू थकेवा होवे ते मैनू मुट्ठी चापी करन दी भी बड़ी वधिया जाच आउंदी है, मैं तेरा थकेवा ला देंगा। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਪ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਰੋਮ ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤਾਸ਼ਮਮ ਮਮ ਚਾਕਰਤ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤਾਸ਼ਵਮ ਮਮ ਚਾਕਰਤ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੋਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤਾਸ਼ਵਮ ਮਮ ਚਾਕਰਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਥੱਪੜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਦਾ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੀ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਟਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਸਤਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹੋ ਧੂਰ ਤੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਇਆ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੋਈ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਸੰਬੰਧ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੀ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਰੀ ਜੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ। ਫਰਿਆਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਰੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੋਈ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਧਰੇ ਦਾ ਦਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਕੋ ਤੋਰ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਪ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। रोटी कमाना, रोटी पकाना, रोटी खान तक ही मनुख सीमत है। खून ते परमात्मा ने बनाना है, कोई ऐसी थोड़ी बनाना है। वो साडे हाथ च रखिया ही नहीं। उसने खादे भोजन का खून ना बने तो फिर असी हो सकते हैं। गुरुद्वारे आना, सत्संग करना, बाणी जपना, वाहेगुरु मंत्र जपना, इबादत करना, अमृत वेले उठना है ते मनुख ने करना है। पर कोई समाधि लीन हो जाए तो उदी बख्शिश है, उते उदी रहमत है। मनुख दे वास दी गल नहीं है, है ही नहीं। इस चक्कर च ना पैना, ये उदी रहमत है। मूसा कहिंदा सी, ऐ खुदा तेरी रहमत मेरे ते हमेशा बरसदी सी, अज की है? अज मेरा मन क्यों नहीं जुड़िया तेरे च? अलहाम होया नहीं जुड़ सकेगा, क्यों? तू अज एक जुड़े हुए नु तोड़ के आया, एक जुड़े हुए नु तोड़ के आया। वो जिहड़ा अलहाम होया उन्हूं मौलाना रोम ने अपनी मसनवी च इंज लिखे है, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया दे जोड़न नहीं आया, तोड़न लई नहीं, तू ते तोड़ के रख दिता है। भावे ओ ना समझ सी, पर उन्हें मेरे नाल संबंध जोड़ लिया सी। वो जिहड़े अपने गुण मेरे सामने रखदा रपया सी, मैनू बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे। एक गल होर भी अर्ज करदे आ, अगर मनुख चतर ते चलाक नहीं है ते संसार विच कामयाब नहीं हो सकेगा। पर मनुख भोला नहीं है, धर्म दी दुनिया च कामयाब नहीं हो सकेगा। चलाक बंदे दी धर्म दुनिया च नहीं चलती, भोला वा संसार विच नहीं चलता। कबीर कहिंदे ने, चतराई ना चतर भुज पाईए, रे जन मन माधो सिउ लाईए। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, सह सियाणपां लख होवे तां इक ना चले ना, चतराईयां सियाणपां आवे किते ना कां। कितनी चतराई कठी कर ले, कितना पार दा ज्ञान कठा कर ले, कितनी सियाणप कठी कर ले, कितना तू चलाक हो जाए, हाजर जवाब हो जाए, परमात्मा दी दुनिया च नहीं चलती। उत्थे ते भोला भा चलदा है, मासूमियत चलती है, उत्थे ते श्रद्धा कम आउंदी है, उत्थे ते अंदरों बाहरों एक हो जाना ए कम आउंदा है। अलहाम होया, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तेनू मैं भेजिया सी जगत विच लोगां दे दिल जोड़न वास्ते, पर तू ते जुड़े नू तोड़ के आ गया। वो जिहड़े गुण अपने दसदा पिया सी, मैनू बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे, तू ते तोड़ के रख दिता। जा हुण तू मेरे नाल तां जुड़ सकेगा, पहले उन्हू जोड़ के आ, उन्हू जाके कह खुदा तेरे वर गई। इतिहास है, मूसा वापस आया, ओदे पैरी पे उस कोल माफी मंगी है, पता की आखे, ऐ आयाली खुदा कहिंदा खुदा तेरे वर गई है, तेरे वर गई है। साडे गुणा ते भी नहीं रीझिया, साडे ज्ञान ते भी नहीं रीझिया, तेरे भोले बा ते रीझ गए। इन्हों भाई साहब भाई गुरुदास जी कहिंदे ने, कहां को करे कछ होत ना कहूं के किए, जां की प्रभ मान ले सर्व सुख ताहे जीव, जिदी मन लवे। और उन भोले चंगे लगदे ने, भगत भोले हुंदे ने। भोले भाए मिले रगर आया, भगत कबीर जी कहिंदे ने, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर आया। भारत विच एक चोटी दे जोगी नू भोला नाथ करके कहिंदे ने, शिव जी नू शं भोला नाथ, भोला शं भोला भोला। परमात्मा दी दुनिया च ए भोलापन चलदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, सह सियाणपां लख होवे, पर ए सैकड़े तरह दियां लखां तरह दियां सियाणपां नावन संसार दे ते कामयाबी नहीं हासिल कर सकदा, पर निरंकार दी दुनिया च नहीं चलदी है। धर्म की दुनिया च नहीं चलती। जब अंतरमुखी होना है सारिया सियाणपां नूं परे रख देना है। सियाणपां दे आसरे ते बाहर दी सियाणपां दे आसरे दे उत्ते मनुख दे हंकार दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा नहीं। इतनी मैं अर्ज कर रहा, अहंकार सब तो अगे होना चाहता है, सब तो अगे होना चाहता है। विनयमय मनुख सब तो पिछे होना चाहता है, सब तो पिछे होना चाहता है। हैरानगी है कि भगत जन अवतारी पुरुष थां थां ते अपने आप नूं कह देंदे ने असी कोई चंगे नहीं, कोई भले नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ते ऐलानिया कहिंदे ने, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। शेख शरफ सूफी फकीर दे पोतरे ने गुरु नानक ते प्रश्न कर दिता सी, कौन हो तुसी, थोड़े बोला ने प्रभावित बड़ा किया, थोड़े इत्थे आउन नाल फिजा बड़ी मुअत्तर हो गई है, तुसी साडे कोल की बैठे हो, इंज लगदा जिवें खुदा बैठ गए, कौन हो तुसी। जद बार बार शेख शरफ सूफी फकीर दे पोतरे ने पुछिया कौन हो तुसी, भावें व्याकरण दे ग्रामर दे ज्ञानी इस दे भिन्न भिन्न अर्थ करते ने, सतगुरु ने जवाब देते ने, मानस मूरत नानक नाम, श्री राग का शब्द है, मनुख की मूर्तियां मनुखा, मानस मूरत नानक नाम पर करणे कुत्ता दर फरमान। इतनी विनम्रता, इतनी निर्माणता। जवसी साहब दियां चार पौड़ियां दे कुदरत दी विचार है, कुदरत कौन कहा विचार, वार ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इहदे च पहले चानण पख नूं साहिब लैंदे ने, असंख जप असंख वाह, कुदरत दे च की हो रहा और कौन कौन ने, बड़े जपीश्वर ने, बड़े तपीश्वर ने, बड़े भगत ने, बड़े ज्ञानी ने, बड़े दानी ने, असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। इस तरह का खुलासा सुखमनी साहब दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया, कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, पता नहीं कितना यह चानण पक्ष। फिर सतगुरु रात नूं अगे करदे ने, रात भी है, असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम कोर, असंख अमर कर जाए, जो जबरदस्ती अपना हुक्म चलांदे ने, अगले दी तौफीक भी नहीं देखते कि अगला ये हुक्म मन भी सकेगा कि नहीं, इतनी उसकी समर्था भी है कि नहीं, पालना भी कर सकेगा कि नहीं, पर भार बोझ बन जाते ने, जबरदस्ती चलांदे, असंख अमर कर जाए जो, असंख गलवड हत्या कमाई, असंख पापी पाप कर जाए। इना सारेयां दी गिनती करदियां करदियां करदियां करदियां तीन पंक्तियां दे ते मूल पंक्ति ये कुदरत कौन कहा विचार, पर इस पौड़ी दे च नहीं है, तीन पौड़ियां दे च मूल पंक्ति यही है, कुदरत कौन कहा विचार। पता इस पौड़ी दे च केड़ी पंक्ति है, नानक नीच कहे विचार, नीचा की गिणती करद्या करद्या, मूर्खा की गिणती करद्या करद्या, पापिया की गिणती करद्या करद्या, चोरां की गिणती करद्या करद्या, फिर उसे कतार दे उसे लाइन सतगुरु आप खड़े हो जाते। नानक नीच कहे विचार, इन्हां नीचा की विचार करने वाला कौन है, ये गिनती कौन कर रहा है। नानक नीच कहे विचार, वारे ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। एक होर पहलू भी इतिहासक मैं थोड़े सामने रखा, गोविंदवाल साहब की गल है। धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने सिंघासन ते बैठे, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਸੌਗਾਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੀਨੇ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਸੀ, 84 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ, ਉਹ ਜਵਾਨ

0: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604-581-1900।

0: प्रतापपुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूने सैभं गुरुप्रसाद मुकुसरे शास्त्र खटो पिंग ग्रंथ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप साथ संगतियों फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप विच ओ सूक्ष्म है अदृश्य है सरगुण रूप विच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरखत दिखाई देंदा है जड़ा नहीं दिखाई देंदिया। शरीर दिखाई देंदा है आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनों इंज बयान करिए जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है तो जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उस दियां जड़ां ने और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है ते जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य का उस अरूप का उस गुप्त का खेल है तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने मिट रही ने बन रही ने मिट रही ने पर इना लहरां का पैदा होना इना लहरां का मिटना सब कुछ सागर विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परल सब परमात्मा दे विच हो रही है सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नू खोजना नहीं है खोजना उसनू पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है जाना उस दे कोल पैंदा जिहड़ा अपने तो दूर हो गया ना उस दे कोल जाना है ना उसनू लभना है सिर्फ जागना है सुचेत होना है सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है ते हाजिर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ए हथ भी जितना तन तो दूर जा सकदा है वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल सी कि मैं उसकी तलाश करता रहा खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है अपने आप नु जगाना। धन सोती फिर सद जागन का मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहिंदे ने असीं अधे जागे हुए हां पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है भजन का नहीं। वाहिगुरु करदे हां किसनों रस आउंदा नहीं पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आउंदा है। रसना अधी जागी हुई है अधी सुती हुई। अखां अधियां जागियां ने अधियां सुतियां हुई हैं। संसार नूं वेख रही ने निरंकार नूं नहीं। कन अधे जागे ने अधे सुते ने। ये जगत नूं सुन रहे ने गुरु नूं नहीं सुनदे ना परमात्मा नूं सुनदे। शरीर संसार नू स्पर्श कर रहा है, निरंकार नू नहीं। जब कोई पूर्ण तौर ते जाग जांदा है, सुचेत हो जांदा है, तो रसना नू भजन दा भी रस आन लग पैंदा। रसना गीदी बोलत राम, वो जैसे राम कहिंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहिंदा है, रस नाल भर जांदा है। उन्हों जो कुछ दिखाई देंदा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप नू जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता, और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जाता है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच बस जाता है। तो मैं इस तरह जद भी किसी महापुरुष नो आत्म ज्ञान होया, वो इस गल ते हैरान होया प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया, लभिया कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नूं पता नहीं आता कि वह मिलिया होया, जिसनों असी भगत संत कह देने आ, उन्हों पता है कि उसके हाथ तो भी नेड़े है, उते हाजिर नाजर है। जद कभी इस तरह की उपलब्धि किसी नूं होंदी है, उसनों हैरानगी भी आती है कि मैं जगत नूं दसा। हकीकत यह है, असलियत यह है। और कभी कर्म कांड तो उच्चे उठने की कोशिश करो। पर कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखो नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते हैं कि राम नाम का हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते हैं संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों, तो उस दे अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियां नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना दी। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं आउंदा, ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहिंदे ने मैं तलाश कर रहा उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकदे ने मैं बेचना चाहना। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन। पटन कहिंदे ने बाजार नो, आप कहिंदे ने कोई बाजार ही नहीं है, किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरियां दी मंडी च बिकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदन दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है, वेचना चाहना। जो अगम्मी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगम्मी रस मैनू मिले है मैं जगत नूं समझाना चाहना, हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं, पता है मंडी की है सत्संग, हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा, गली गली विच मंदिर है सत्संग किधरे किधरे, गली गली विच गुरुद्वारे ने सत्संग किधरे, सुनिया पईयां ने मस्जिदां खाली पे ने मंदिर, या किधरे एक कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल रही पे। हुण मशीन बंद भी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल रही ने, रैराज साहब का पाठ टेप ला लो, असा दीवार का कीर्तन टेप ला दो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा है, जे सारा दिन ही टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म गए नहीं हो जाना, बस मनुख भी इस तरह का ही हो गया, तो भी मैच कर मशीन ही हो गया, मशीन की तरह की यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है, जागृत नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तक करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना, गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहर बाजार ने, उन्होंने नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख्त का काम शुरू होया, बई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने, जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार देखते अजकल चमड़ा ही बिकता है, या मोटा मांस बिकता है, जौहरिया की दुकाना खोल। जयपुर का जोड़ा जौहरी बाजार है, उत्थे हीरिया की खरीद फरोख्त होती है, उत्थे सिलसिला है। और इतना वड्डा ये देश है, हीरिया की मंडी, हीरिया का बाजार किधरे किधरे, हर थां ते नहीं, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है, हर शहर विच हीरिया की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहन जिहड़ा हीरा कोल है, वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है, जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, इत्थे मूर्खता होवेगी, इत्थे मूर्खता होवेगी। हर जगह जिते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती, इत्थे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहिंदे ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहिंदे ने भ्रमण करदिया करदिया कदी कदाएं मंडी मिल जाती है, पटन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भ्रमण करदे करदे किसी शहर के सत्संग लग जाता है, तो कबीर कहिंदे ने खुशी हो जाती है, मैनू मंडी लग पई। पर आप कहिंदे ने मेरी खुशी एकदम मायूसी विच बदल जाती है, क्यों? नहीं पटन, नहीं पार खो, पटन ते लभ पे है, बाजार ते लभ पे है, पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पारखू नहीं ने हीरिया दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदिरां विच, भगवान दी कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारिया विच गुरु का कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदा विच खुदा की कोई समझ नहीं, खुदा का कोई ज्ञान नहीं। कहते पारखू ही कोई नहीं, तो जब पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है, जब पारखू ही नहीं है तो हीरा कच्छ है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार में एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता है। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, मैनू कह लगा गया नहीं जी ये रतन तुम वेखे ने, नहीं विशेष रूप से नौ आते ने, नौ रतन हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनू कह लगे ये तुम देखे ने, मैं कह नहीं सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढ़ो, मैं थानू दुकान पर लै जाना अपनी, सारे दिखा देना, मेरे को सारे ही हैं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान पर पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान पर मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए, एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होता गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहते ने हीरा लेके मैं बैठ गया, कोई पारखू ही नहीं है, किसी ने समझ ही नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। मैं दोहरा दिया, आ रहे ने लोकी मस्जिद खुदा दी कोई समझ नहीं है, आ रहे ने लोकी गुरुद्वार गुरु का कोई बोध नहीं है, बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरों में भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। आप कहते ने कदी कदाई भ्रमण करदिया किसी बाजार में पारखू भी मिल जाते, समझ पता है सत्य की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है, चर्चा ही हो रही है सत्य दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर ये दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही है, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही, और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके ये किन्नी कु दया है, ये किन्ना कु प्रेम है, ये दृष्टि विच कितनी समानता है, ये किन्ना कु निर्वैर है, किन्ना कु निर्भय है, इन्हां दैवी गुणा के पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख किन्ना कु धार्मिक है, और किस तरह नापोगे। चानना सारे दा सारा सूरज दा है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने, सब गुण तेरे मैं नाही को, गुण ते सारे उस दे ने। रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे छो रही है, पर रोशनी ते सारी सूरज दी है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहिंदे ने भ्रमण करदिया करदिया खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लभ पिया ते पारखू भी लभ पिया, उन्हें समझ आया समदृष्टि किसनु कहते, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ आया ही नहीं बाजार विच, उन्हें परख भी है, समझ है। तो कबीर कहते मन खुश हो जाता है, चलो पारखू मिल गए। कहते ने संगीत कोई गा रहा हो, कोई आलाप कर रहा है, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕੀ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਗ ਹੈ ਕੀ। ਕੁਛ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਉਂ? ਪਾਰਖੂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਖੂ ਤੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਹਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ 'ਚ ਮੰਗਦਾ। ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੀਟੀਆਂ ਪੱਥਰੋਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੀਰੇ 'ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਖ ਅਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉਂ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਜਵਲ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਪਰਿਕਸ਼ਰ ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ये सारे दूजा भाव दियो, धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की इजाजत मिले। पहले पहले बच्चा पूर्णिया ते लिखता है, पूर्णे पाने कहते, ये सब पूर्णे पाने ने, धन अर्पण करना, फुल अर्पण करने, वस्त्र अर्पण करने, अन्न अर्पण करना, ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की इजाजत आ जाए। और जैसे मन अर्पण किया परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। रोज सत्संग विच आना, कथा कीर्तन सुनना, ये सिर्फ अपने आप नू तैयार करना है कि एक दिन असी अपनी मत भेट कर देंगे, अपना मन भेट कर देंगे। कि जिस दिन अपना मन देन नू जी करे, मत भेट करन नू जी करे, समझ लो सत्संग दा फल मिल गया, सत्संग दी सफलता प्राप्त हो गई, चौली विच पै गई। ये फल है, क्योंकि अपना मन जैसे भेट करता है मनुख, ते गुरु दी मत प्राप्त होंदी है, तो गुरु दी मत विच ही परमात्मा है। मनुख दी मत विच पदार्थ ने, मनुख दी सोचनी विच की है, संसार है, पदार्थ ने, गुरु दी सोचनी विच परमात्मा है, निरंकार है। मत भेट की थी अपनी, ले ली गुरु दी मत, उसे मत द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपनी मत दे उत्ते शराब पीना है, गुरु की मत दे अमृत छकना है। अपनी मत दे उत्ते दोपहर नूं उठना है, गुरु की मत दे अमृत वेले उठना। बस जैसे गुरु की मत आई, सारे ही दैवी गुण जो है आ जाते हैं। गुरु की मत दे ही परमात्मा है, गुरु की मत दे ही सारा अनंत परिपूर्ण परमात्मा का रस है। सतगुर रहमत करन, सत्संग करद्या करद्या साडा मन तैयार होवे, कि ये मन भेट कर देना है, गुरु की मत ले लेनी है, इतने शब्द प्रवान करने, सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, ओ महान हीरा, ओ महान रब्बी दौलत सानू भी प्राप्त होवे, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र सतगुरु की जो है बाणी विच है। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद, महापुरखों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। ये पावन अस्थान जिथे मैं देखदा वाकई छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी है, और बहुत सोहनी लंगर की मर्यादा भी है, संगत ते पंगत का सिलसिला है। पातशाह रहमत करन, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बख्शिशा करन, संगत चलती रहे, पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दियां शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां की पूर्ति होंदी रहे। सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल तुगदी शमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स, हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जा कॉल किरण @604581 1900।

समझो तिहारी, हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी। आप ले ओ तुम कथा सुधारी, कहां लगे एहो कीट बखाने। महिमा तोर तो ही प्रभु जाने।

दुष्ट दोख दे रहा। खड़ के मैं सरण तिहारी, आप हाथ दे उबारी, सर्ब ठाउर मोह हो सुहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोहियन को शय करता। श्री आस्तो जजा पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अडिल। सुने गुंग जो आहे सो रस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पहो निकट ना तिर नर के रहै, हो जो या की एक बार चाओ पाई को कह। चाओ पाई संबत सतरह सहस पणिज, अर्ध सहस पुण तीन कहिज। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र उपख्याने, त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 405 चरित्र समापत। मस्त सोभ मस्त अफजून दोहरा।